0: संत दुखी का थाव को ना है
1: नानक संत पावे ता ओ बिगत पाए
0: संत का निंदक मात दाए
1: संत का निंदक खेंटे का ना पाए।

0: ताप चतर गोप्त कुछ पूछत लेखा
1: रघुनाथ निरंजन गुच्छर गादे
0: ताप कौन छुटे कौन बंधन बादे
1: अपने आप ही चर्जा
0: नानक अपन रूप आप ही उपजा
1: जय निर्मल।

0: सत वचन साधु सब कहत
1: जो सोई सुख मने
0: कर्ण करावन हार प्रभ जाने
1: अंतर वसे बार भी ओही
0: नानक दासन देख सब मोही
1: आप सत किया सब

तदनु जति सती संतोखी गावन तुदनो वीर करारे गावन तुदनो पंडित पढ़नरकीश्वर जुग जुग वेदा नाले गावन तुदनो मोहनिया मन मोहन स्वर्ग माछ पयाले गावन तुदनो रतनो पाए तेरे

चारे गावन तुदनु खंड मंडल ब्रह्मंडा कर कर रखे तेरे तारे सेई तुदनु गावन जो तुद पावन रत्ते तेरे भगत रसाले।

कर कर जिनसी माया जिनू पाई, कर कर देखै कीता आपना ज्यों तिस दी वडियाई। जो तिस भावै सोई करसी, फिर हुक्म ना करना जाई। सो पातशाह शाहपत साहिब नानक रह न रजाई। आसा महला पहला सुन वड्डा आखे सब कोए, केवड वड्डा डीठा होए। कीमत पाए न कहया जाए, कहने वाले तेरे रहे समाए।

नाहे रहाओ, साचे नाम की तिल वडियाई, आक थके कीमत नहीं पाई, जे सब मिलके आखण पाहे।

निरंजन, हर पुरख निरंजन, अरगम अगम अपारा, सब त्यामै सब त्यामै तुद जी, हर सच्चे सिरजन हारा, सब जी तुम्हारे जी, तू जिया का दातारा, हर त्यावो संतो जी, सब दुख विसारन हारा, हर आपे ठाकुर हर आपे सेवक जी, क्या नानक जंत विचारा, तू घट घट अंतर सर्ब निरंतर जी, हर एको पुरख समाना, एक दाते एक पेखारी जी।

तुहे अपना जान करो व्रत पारा, तुम साहे मैं किंकर थारा, दा जान दा हाथ उबारो, अमरे सा बैरियन संगारो, प्रथम तरो भगवत को ध्याना, बहुर करो कविता बिदनाना, किशन जथा मत चरित्रो चारो, चूको कबले हो सुधारो कबिबाज दोहरा, जो निज ब्रह्मो सो कहा सो कहे हो जग माहे, जो ते प्रभु को त्याय है अंत स्वर्ग को जाहे दोहरा, हर हर जन द्वि एक है बेबिचार गच नाहे, जल ते उपज तरंग ज्यो जल ही बिखे समाहे दोहरा, जब आए स प्रभु को भयो जन्म धरा जग आए, अब मैं कथा संक्षेप ते सब हूं कहत सुनाए कब बाज दोहरा, ठाट भयो मैं जोर कर बचन कहां सिर न्याय, पंथ चलाए तब जगत मैं जब तुम करो सहाय दोहरा, जे जे तुमरे ध्यान गाओ नितुड़ते आए हैं संत, अंत लहेंगे मुक्त फल पावेंगे भगवान दोहरा, कालपुर की देह मोह कोटक बिशन महेश, कोट इंद्र ब्रह्मा किते राव सस क्रूर जले दोहरा, राम कथा जुग जुग अटल सब कोई भागत नेत, स्वर्गवास रघुबर करा सगरी पुरी समेत चौपाई, जो ए कथा सुने अर गावै दुख पाप ते निकट न आवै, बिशन भगत की ए फल होई आद ब्याद शब सके न कोई, सम्मत सत्रह सहस पचावन हाड़ बदी प्रथम सुखदावन, त्वा प्रसाद कर ग्रंथ सुधारा भूल परी लो लियो सुधारा दोहरा, नेत्र तुमके चरण तार सद्रव तीर तरंग, श्री भगवत पूर्ण कियो रघुबर कथा प्रसंग दोहरा, साध असाध जानो नहीं बास बाद विवाद, ग्रंथ सगल पूर्ण कियो भगवत कृपा प्रसाद सवैया पाए।

अनेक कहें मत एक ना मान्यो, सिमरत शास्त्र वेद सबै बहुभेद गए हम एक ना जान्यो। श्री स्पान कृपा तुमरी कर, मैं ना कहे सब तो

अल्लाह तीजा आनंद एक ओंकार सतगुर प्रसाद आनंद भया मेरी माए सतगुरु मैं पाया सतगुरता पाया सहज सेती मन वजिया वाधाइया राग रतन परवार परियां शब्द गामन आईया शब्दोता गावो हरी केरा मन जनी वसाया कह नानक आनंद होवा सतगुरु मैं पाया ए मन मेरिया तू सदा रहो हर नाले हर नाल रहो तू मन मेरे दुख सब विसारना अंगीकारो करे तेरा कार्ज सब सवारना सबना गल्ला सम्राट स्वामी सो क्यों मनो मिसारे कहे नानक मन मेरे सदा रहो हर नाले साचे साहिबा क्या ना ही कर तेरा है करता तेरा सब किश है जिस देहे सो पावे सदा सिफत सलाह तेरी नाम मन वसावे नाम जिनके मन वसिया वाजे शब्द गनेरे कहे नानक सच्चे साहिब क्या ना ही कर तेरा साचा नाम मेरा आधारो साच नाम आधार मेरा जिन भुखा सब गवाइया कर सात सुख मन आए वसिया जिन इच्छा सब पुजाइया सदा कुर्बान कीता गुरु बिटो जिस दिया ए वडियाइया कहे नानक सुनो संतो शब्द तरो प्यारो साचा नाम मेरा आधारो वाजे पंच शब्द तित घर सभागै घर सभागै शब्द वाजे कला जित कर धारिया पंच दो तुत वास कीते काल कंटक मारिया तुर गर्म पाया तुत जनकाव से नाम हर के लागे कहे नानक तै सुख होवा तितकर अनहद वाजे अनद सुनो बट भागी हो सगल मनोरथ पूरे पार ब्रह्म प्रपाया उतरे सगल मिसूरे दुख रोग संताप उतरे सुनी सच्ची बाणी संत साजन भये सरसे पूरे गुरते जानी सुनते पुनीत कहते पवित सतगुर रहया भार पूरे बिनवंत नानक गुर चरण लागे वाजे अनहतूरे मुदावणी महला पंजवा थाल विच तिन वस्तु पइयो सत संतोख विचारो आमृत नाव ठाकुर का पयो जिसगा सब सधारो जे को खावे जे को पुंचै तिसगा हुए उधारो ए वस्त जी नह जाई निद निद राघुर धारो तम संसार चरण लग तरिया

गुरुदेव दाता हर नाम उपदेसा, गुरुदेव मंत निरहोधरा, गुरुदेव शांत सत बुद्ध मूरत, गुरुदेव पारस परस परा, गुरुदेव तीर्थ अमृत सरोवर, गुरु ज्ञान मज्जन अपरंपरा।

परम सम्मान योग जुगो जुग अटल चवर शतर तुखत दे मालक तन तन श्री गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह जी दी पावन गोद विच साजी निवाजी गुरु रूप गुरु प्यारी साध संगत जी अते मीडिया राही टीवी चैनल राही गुरु चरणा नाल जुड़ बैठी गुरु रूप साध संगत जी आप सारे ही वड़भागी हो धनता दे योग हो जो सतगुरां दी पावन बाणी अमृतमई बाणी सरवण करके आत्मक आनंद माण रहे हो अपना ये मनुखा जन्म सफला कर रहे हो। आओ जो सामदे दीवाना विच लड़ीवार विचार चल रही है ओ विचार आपा कर सकीए। विचार आरंभ करन तो पहला सतगुरां दी बख्शी हुई फतेह प्रवान करो जी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। जो शब्द गुरु नानक साहिब सच्चे पातशाह जी दी पावन रसना तो उच्चारण किया हुआ आशा राग दे अंदर

तो ऐसा है गुरु रामदास महाराज, गुरु रामदास महाराज का दर जिथे सदा ही बख्शिशा दातां बरस दिया ने, झोलियां भरिया जांदियां ने, जिहड़े खाली झोलियां लैके जांदे ने वह फिर झोलियां भर के आउंदे। गुरु रामदास महाराज ऐसा दाता है, किसी नूं कदी भी खाली नहीं मोड़दा, धर्म नहीं वेखदा किसी दा। गुरु रामदास प्यार वेखदा, भावना वेखदा, जिन्नी तू सेव्या भाओ कर सेत पार उतारिया। हे गुरु रामदास महाराज, जिन्हां ने तेनू भावना करके सेवना कीता है, तेरा नाम जपया है, गुरु रामदास जिन्हां ने भावना करके तेरा नाम जपया है, तेरे दर की सेवा कीती है, भावना करके तेरे अगे अरदास कीती है, तो सची मुची उन्हां दी अरदासां पूरियां कीतियां, पार उतारा कर दिता उन्हां दा। ऐसा दाता है गुरु रामदास। आने वाले दीवाना दे अंदर भी इस तरह शैबरा गुरु रामदास महाराज की सिफत आओ समाप्ति है जी।

वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु।

वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु।

ब्रह्म ज्ञानी कै मन होय प्रगाह जैसे धर उपर आकाश ब्रह्म ज्ञानी कै मित्र सत्र समान ब्रह्म ज्ञानी कै नाही विमान ब्रह्म ज्ञानी उचते उच्चा मन अपने है सब ते नीचा ब्रह्म ज्ञानी से जन पहे नानक जिन प्रभु आप करे ब्रह्म ज्ञानी सगल किरी नाथ ब्रह्म ब्रह्म ज्ञानी तीना ब्रह्म ज्ञानी की सब उपर माया ब्रह्म ज्ञानी ते कछ बुरा न पह ब्रह्म ज्ञानी सदा समदर्शी ब्रह्म ज्ञानी की दृष्टि अमृत बरसी ब्रह्म ज्ञानी बंधन ते मुक्ता ब्रह्म ज्ञानी के निर्मल जुगता ब्रह्म ज्ञानी का भोजन ज्ञान नानक ब्रह्म ज्ञानी का ब्रह्म ध्यान ब्रह्म ज्ञानी एक उपरास ब्रह्म ज्ञानी का नहीं विनाश ब्रह्म ज्ञानी कै गरीबी समाह ब्रह्म ज्ञानी पर उपकार उमाह ब्रह्म ज्ञानी कै नाही धंधा ब्रह्म ज्ञानी ले तावत बंदा

ज्ञानी एक संग हेता। ब्रह्म ज्ञानी कह हो अचिंत, ब्रह्म ज्ञानी का निर्मल मंत, ब्रह्म ज्ञानी जैस कर प्रभ आप, ब्रह्म ज्ञानी का बड़ प्रताप, ब्रह्म ज्ञानी का दर्श बड़ भागी पाई है, ब्रह्म ज्ञानी का बाल बाल जाई है, ब्रह्म ज्ञानी का खोजे महेश्वर नानक, ब्रह्म ज्ञानी आ परमेश्वर, ब्रह्म

परसे वैसनो सो जेसु परसो प्रसान बिसन की माया ते होए पिन कर्म करत हो वै निह कर्म तिस बहनों का निर्मल धर्म काम फल की इच्छा नहीं बाँछै।

कई कोट राधे रस भोगी, कई कोट पंखी सर्पे उपाय, कई कोट पाथर वृख निबजाय, कई कोट पवन पाणी बैसंतर, कई कोट देश बहुमंडल, कई कोट शशि अर सूर नक्षत्र, कई कोट देवदान विंदर सुर छत्र,

कईकोट बजो नहीं फिर है। कई कोट बैठत ही खाहे, कई कोट काले थक पाहे, कई कोट किए तरबंद, कई कोट माया मह चिंत, जह जय भाणा तह तह राखे, नानक सब कुछ प्रभु कै हाथे। कई कोट पहे बैरागी, राम नाम संग तिन लिव लागी, कई कोट प्रभु को

से उसका ओह करने हार उसते बहन कह किस होए थाम सरंतरे कैस होए अपने चलत आप करने हार कवत करे रंग अपार मन महया मन प्रेमा हे नान कीमत कह न जाए सत सत सत प्रभु स्वामी गुर प्रसाद किने वख्यानी सच सच सत सब कीना कोट मध्य किने बिरले चीना भला भला भला तेरा रूप अत सुंदर अपार अनूप निर्मल निर्मल निर्मल तेरी बाणी घट घट सुनी सरवण बख्याणी पवित्र पवित्र पवित्र पुनीत नाम जपै नानक मन प्रीत सलोक संत सरन जो जन पर सोजन उदरन हार संत की निंदा नानका बहुर बहुर अवतार अष्टपदी

साधु गाधो खे साधु मिथया काहत किरतन निंदक का तुर ही पया नानक ज्योति पहावै सोई थया संत का दुखी बिग रूप हो जाए संत के दुखी को दर के मिले सजाए संत का दुखी सदा सहकाई संत का दुखी ना मरे ना जीवाई संत के

हर संग सहज सुपाय हो वै सो होय करने हार पिछाणे सोए प्रभ का किया जन मीठ गाना जय सा तैसा दृष्टाना जेह ते उजे ते समाय समाये हुए सुख निदान उन्हु बनाए आप को आप दीनो मान नान प्रभ जाने को जान श्रोक सर्व कला परपूर प्राव विरथा जान हार जा कै सिमरनी उदरी है नानक तिस बलिहार अष्टपदी टूटी गान हार कृपाल सर्व जिया पे व्रत पाल सगल की चिंता जिस मन माय तिस ते विरथा कोई ना हेरे मन मेरे सदा हर जा विनाशी प्रभ आपे आप आपन किया कछु न हो जे सो प्राणी

नाथ मान से जतन करत बहु पात तिसके करत बिरथे जात मारे राखे वरन कोय सर्व जिया का राखा सोय काहे सोज करहे रे प्राणी जप नानक प्रभ अलाखि।

चार कुंट दद से समाय तहते पहना ही कोठाओ गुर प्रसाद नानक सुख पाओ वेद पुराण सिमरत मैं देख ससियर सूरन खेत्र मैक।

जिसे प्राप्त हो खेम शांत हरिद्ध नव निध बुद्ध ज्ञान सर्वतः सिद्ध विद्या तब योग प्राप्त ध्यान ज्ञान श्रेय चूत मिशनान चार पदार्थ कमल प्रगा सब कह मद सगल देवदास सुंदर चतर तत्का बेता समदर्शी एक दृष्टेता ए फल तिह जन कै मुख भणे गुरु नानक नाम वचन मन सुने एहो निधान जपै मन कोई सब ज

जाने मन कोय। मन्ना सुरत होवे मन बुद्ध, मन्ना सगल भवन की सुध। मन्ना मो चोटा ना खाए, मन्ना जम कै साथ ना जाए। ऐसा नाम निरंजन होए जे को मन जाने मन कोय। मन्ना मार्ग ठाक ना पाए, मन्ना पद स्यों प्रगट जाए। मन्ना मगना चल पंथ, मन्ना धर्म से तीसन बंध। ऐसा नाम निरंजन होए जे को मन जाने मन कोय। मन्ना पावे मोख द्वार, मन्ना परवार आए साधार। मन्ना तारा तारे गुर सिख, मन्ना नानक भवे न भिख। ऐसा नाम निरंजन होए जे को मन जाने मन कोय। पंच प्रवान पंच प्रधान, पंचे भावे दरगे मान। पंचे सोहे दर्रा जान, पंचा का गुर एक ध्यान।

अहंकार, असंख जप, असंख भाव, असंख पूजा, असंख तप ताव, असंख ग्रंथ मुख वेद पाठ, असंख योग मन रहे उदास, असंख भगत गुण ज्ञान विचार, असंख सती असंख दातार, असंख सूरम भग सार, असंख मोहन लिव लाए तार, कुदरत गमन गहा विचार, वारिया ना जावा एक बार, जो तुद भावै साई भली कार, तू सदा सलामत निरंकार, असंख मूर्ख अंध घोर, असंख चोर हराम खोर, असंख अमर कर जाहे जोर, असंख अलभटत्या कमाहे, असंख पापी पाप कर जाहे, असंख कूड़ियार कूड़े फिराहे, असंख मलेश मल भख खाहे, असंख निंदक

अहंकार असंख नाम असंख थाम अगम अगम असंख लो असंख है सिर पार हो अखरी नाम अखरी सालाह अखरी ज्ञान गीत गुण गाह अखरी लिखन बोलन बाण अखरा सिर संजोग बखाण जिन ए लिखे तिसर नाहे जे फुरमाए तिबते पाहे जिता कीता तिता लाओ बिरना मैं नाही को थाओ।

अगंज है, अपंज है, अचूज है, अचंज है, अमीक है, अरफीक है, अतंत है, अबंध है, निर्भूज है, सूज है, अकाल है, अजाल है, अलाह है, अजा है, अनंत है, महंत है, अलीक है, दर शरीक है, दृढ़ है, असम है, अगम है, अजम है, अभूत है, अशूत है, अलोक है, अशोक है, अकर्म है, अपर्म है, अजीत है, अपीत है, अबा है, अगा है, अमान है, निदान है, अनेक है, फिरेक है, भुजंग प्रयाद छंद नमो सर्वमान्य समस्ती निधान्य नमो देव देवे अपेखी अभेवे नमो काल काले नमो सर्वपाले नमो सर्वगौणे नमो सर्वपौणे अनंगी अनाथेन्द्र संगी परमाथे नमो पान पाने नमो मान माने नमो चंद्र चंद्रे नमो भान पाने नमो गीत गीते नमो तान ताने नमो नृत्य नृत्य नमो नाद नादे नमो पान पाने नमो बाद बादे अनंगी अनामे समस्ती स्वरूपे परभंगी परमाथे समस्ती विभूते कलंक विदारे कलंकी स्वरूपे नमो राजे सुंगपरम रूपे नमो जोग जोगे सुंगपरम सिद्धे नमो राजे सुंगपरम वृद्धे नमो शस्त्रपाने नमो अस्त्रमाने नमो परम ज्ञाता नमो लोकमाता अपेखीय परमीय भोगीय भुगते नमो जोग जोगे स्वं परम जुगते नमो नित नारायणे क्रूर कर्मे नमो प्रेत अप्रेत देवे सुधर्मे नमो रोगहर्ता नमो राग रूपे नमो शाह शाहं नमो पूपे नमो दान दाने नमो मान माने नमो रोग रोगे नमो संसनाने नमो मंत्र मंत्र नमो जंत्र जंत्र नमो इष्ट इष्टे नमो तंत्र तंत्र सदा सचदानंद सर्व प्रणाशी अनुपे रूपे समस्त निवासी सदा सिद्धदा बुद्धदा बृहदकर्ता अदो ऊर्ध अर्धंग अगंग ओघर्ता परंग परंग परमेश्वर प्रोषपालंग सदा सर्वदा सिद्धाता दयालंग अशेदीय भेदीय नाम अकाम समस्तो पराजी समस्तस्तामंग तेरा जोर चाचरी शांत जले हैं थले हैं पीत हैं अपे हैं प्रभु हैं अजू हैं अदेश हैं अपेश हैं भुजंग प्रयाद छंद अगाधे अबाधे नंदी स्वरूपे नमो सर्वाने समस्ती नदाने नमस्तवंग नृनाते नमस्तवंग परमाथे नमस्तवंग अगंजे नमस्तवंग अपंजे नमस्तवंग अकाले नमस्तवंग अपाले नमो सर्वदेशे नमो सर्पेशे नमो राजराजे नमो साजे नमो शाह शाहे नमो माह माहे नमो गीत गीते नमो प्रीति प्रीते नमो रोख रोगे नमो शोक शोके नमो सर्वरोगे नमो सर्वभोगे नमो सर्वजीतंग नमो सर्वपीतंग नमो सर्वज्ञानंग नमो परमतानंग नमो सर्वमंत्रंग नमो सर्वजंत्रंग नमो सर्वदेशंग नमो सर्वकृसंग नमो सर्वरंगे त्रिभंगीय रंगे नमो जीव जीवंग नमो बीज बीजे अखिजे अभिजय समस्तंग प्रसिज्जे कृपालंग स्वरूपे कुकर्मंग प्रणासी सदा सर्वदा हृदय सिद्धंग निवासी चरपट शांत द्वा प्रसाद अमृत गर्मे अमृत धर्मे अखल जोगे अचल भोगे अचल राजे अटल साजे अखल तरमंग अल्लाह करमंग सर्वंग दाता सर्वंग ज्ञाता सर्वंग भाने सर्वंग माने सर्वंग प्राणंग सर्वंग तरानंग सर्वंग भुगता सर्वंग जुगता सर्वंग देवंग सर्वंग भेवंग सर्वंग काले सर्वंग पाले रुआल छंद त्वा प्रसाद आद रूप अनाद मूर्त अजोन पुरख अपार सर्वांतरमान देव अभेव आद उदार सर्वपालक सर्वकालक सर्वगोपन काल जतर ततर विराज ही अवधूत रूप रसाल नाम ठामना जात जाग रूप रंगना रेख आद पुरख उदार मूर्त अजोन आद अशेख देश और ना पेहजा के रूप रेखना राग जतर ततर दिशा विसा हुए फैल्यो अनुराग नाम काम विहीन पेखत ताम हू न जाहे सर्वान सर्वतरमान सदैव मान ताहे एक मूर्त अनेक दर्शन कीन रूप अनेक खेल खेल अखेल खेलन अंत को फिर एक दे भेवना जाने जे वेद और कतेव रूप रंगना जात पास सो जाने के जेब आत्मात्ना जात जाकर जन्म मरण विहीन चकर बकर फिर चतर जग मानी प्रतीन लोग चौदह के बिखे जग जाप ही जे जाप आदेव नाद मूर्था प्यो सबे जे था परम रूप पुनीत मूर्त पूर्ण पुरख अपार सर्व सब रचयो स्वयं गण भंजनहार कालहीन कला संयुक्त काल पुरखादेश धर्मताम सो परम रायता भूत अलख अभे संग रंग जाके जात पात न नाम गर्भ गंजन दुष्ट भंजन मुग्धाय काम आप रूप अमीक अनुसत एक पुरख अवधूत गर्भ गंजन सर्वभंजन आदरूप सूत अंगहीन अभंगनात्म एक पुरख पार सर्वलायक सर्वगायक सर्व प्रतपार

गुणगन प्रणाम जल थल मुदाम अंश अंगासन उपमा पार गतमितुदार जल थल अमंड दिशुष पंड जल थल मंद दिशुष ब्यांत अनुभव राज तिरतरतुर आसा जान बाह आजान बाहो एक सदा ओंकार आद कथनिया नाद खलखंड ख्याल गुरबर काल घर घर प्रणाम चित चर नाम अंश च गात अजना बात अन झंझ गात अंदरंज बात अन टुट भंडार अन ठट अपार आडीठ सरमत ठीठ कर्म अन बरन आनंद दाता महंथर बोल मना शांत त्व प्रसाद करुणालय है अरकालय है खलखंडल है मह मंडल है जगतेश्वर है परमेश्वर है कल कारण है सर्व उबारण है त्रित के तरण है जाके कर्ण है मन मान्य है जग जान्य है सर्वंग पर है सर्वंग कर है सर्पाश है सर्वनाश है करुणाकर है विश्वम्बर है सर्वेश्वर है जगतेश्वर है ब्रह्मंडस है खलखंडस है प्रतेपर है करुणाकर है आ जपा जपे आ थपा थपे आ कृता कृत्या अमृता मृत्या अमृता मृत है करुणा करते हैं आ कृता कृत है तरणी तृत है आमतेश्वर है परमेश्वर है आ कृता कृत है आमृता मृत है अजवा करते हैं अमृता अमृत है नरनायक है खरकायक है विश्वम्बर है करुणालय है नृपनायक है सर्पायक है पापंजन है अर्गंजन है अर्भतापन है जब जापन है अकलंकृत है सर्वा कृत है कर्ता कर है अर्थ हर है परमात्म है सर्वात्म है आत्म बस है जासके जास है भुजंग प्रयाद छंद नमो सूर्य सूर्ये नमो चंद्र चंद्रे नमो राज राजे नमो इंद्र इंद्रे नमो अंधकारे नमो तेज तेजे नमो बृंद बृंदे नमो बीज बीजे नमो रासंग ताम संग सांद रूपे नमो परम तत्ंग तत्ंग स्वरूपे नमो जोग जोगे नमो ज्ञान ज्ञान मंत्र मंत्रे नमो ध्यान ध्याने नमो जुद जुदे नमो ज्ञान ज्ञान नमो भोज भोजे नमो पान पाने नमो कलह कर्ता नमो सांत रूपे नमो इंद्र इंद्र अनादंग विभूते कलंकार रूपे अलंकार अरंगे नमो आस आसे नमो बांक बंगे भंगी स्वरूपे अरंगी अनामे त्रभंगी त्रकाले अरंगी अकामे एक अश्री शांत अजाय अलाय अभय अभय अपू अजू अनास अकाश अगंज अभंज अलाख अपाख अकाल दयाल अलेख अभेघ अनाम अकाम अगह अटा अनाथे परमाथे अजोनी अमोनी न रागे न रंगे न रूपे न रेखे अकर्मंग अपरमंग अगंजे अलेखे भुजंग प्रयाद छंद नमस्तुल प्रणामे समस्तुल प्रणासे अगंजुल अनामे समस्तुल निवासे नृगामंग विभूते समस्तुल स्वरूपे कुकर्मंग प्रणासे सुतर्मंग विभूते सदा सचदानंद सदरंग प्रणासी करीमल करिंदा समस्तुल निवासी अजाय विभूते गजाय गनी में हरियंग करियंग करीमल रही में चतुर चक्रवर्ती चतुर चक्र भुगते स्वयं भव सुभंग सर्वदा सर्वजुगते दुगालंग प्रणासी दयालंग स्वरूपे सदा अंग संगे अभंगंग विभूते चतुर चक्रवर्ती चतुर चक्र भुगते स्वयं भव सुभंग सर्वदा।

परम सम्मान योग जुगो जुग अटल जवर शतर तखत दे मालक तन तन श्री गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह जी दी पावन गोद विच साजी निवाजी गुरु रूप गुरु प्यारी साध संगत जीओ आप सारे बड़भागी हो तनता दे योग हो जो सतगुरां दी पावन गोद विच बैठ के सतगुरां दी पावन बाणी सरवण करके आत्मक आनंद माण रहे हो अपने घर बैठे कारोबार ते बैठे मीडिया राही गुरु चरणा नाल जुड़ बैठे हो सारे ही बहुत वड्डे पागां वाले हो आओ अज जो सतगुरां ने अमृत वेले पावन हुक्मनामा बख्शिया उस दी विचार आपां कर सकीए विचार आरंभ करन तो पहलां सतगुरां दी बख्शी हुई फतेह प्रवान करो जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। अज जो अमृत वेले सतगुरु गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह जी ने पावन फुरमान बख्शिया ओ पावन शब्द पंजवें पातशाह धन धन गुरु अर्जन देव साहिब सच्चे पातशाह जी दी पावन रसना तो उच्चारण किया होया जैतसरी राग विच गुरु ग्रंथ साहिब जी दे अंग 701 702 उत्ते सुशोभित है। सतगुरु गुरु अर्जन देव साहिब सच्चे पातशाह जी ने पहले पदे नू ही रहाउ दा बंद बनाया ते गुरदेव पातशाह जी बख्शिश कर रहे ने कोई जन हरस्यों देवै जोर खे भाई कोई मनुख मैनू परमात्मा दे चरणा नाल जोड़ देवे जा इवें कह लईए इवें अर्थ कर लईए कि जिस मनुख दे अंदर परमात्मा दे चरणा नाल जुड़न दी अंदर विहवलता है अंदर एक तड़प है अंदर एक चीज है ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਮੇਲ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਗੁਰਦੇਵ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕੋਈ ਜਨ ਹਰਸਿਓ ਦੇਵੈ ਜੋਰ ਜੇ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਮੈਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ। चरण गाहों मैं उदे चरण फड़ लवांगा। इतिहासक घटना आपा लईए चरण ता भाई लैणा जी ने भी गुरु नानक साहिब सच्चे पातशाह जी दे फड़े ने गुरगद्दी दे वारस बन गए। चरण ता बाबा अमरदास साहिब सच्चे पातशाह जी ने भी धन गुरु अंगद साहिब सच्चे पातशाह जी दे चरण फड़े सन गुरता गद्दी हासिल कर ली। चरण ता भाई जेठा जी ने भी गुरु अमरदास साहिब सच्चे पातशाह जी दे फड़े सन गुरता गद्दी हासिल कर ली।

चाचे ताए हो ना वड्डा बणिया करो। उस बंदे दा जिगरा देखो जिसने 20-22-25 साल अपनी बच्ची नू पालिया पोसिया, दुख विच सुख विच उहदी संभाल कीती, पढ़ाया लिखाया ते नाल कुछ खर्ची भी करके ये जिगर दा टुकड़ा ये तुहानू सौंप दिता, तुहाडे हवाले कर दिता। प्यारे हो की रख लिया उन्हें, एक जिगर दे टुकड़ा तुहानू सौंप दिता, फिर वड्डा तां ओह होया ना। अज बाबा अमरदास साहिब सच्चे पातशाह जी गले नहीं मिले, अज गुरु अंगद साहिब सच्चे पातशाह जी दे चरण कड़ लाए। अज कूड़म बन के नहीं आया, अगे मिलदे सी कूड़म करके मिलदे सी, अज कूड़म करके नहीं मिलिया, अज तां सिस करके तुहाडे चरणा च टह पिया। बस किते मैनू अपना सिस बना लो, मेरे गुरु बन जाओ। धन गुरु अंगद साहिब सच्चे पातशाह जी ने दोवां बाहां फड़ियां, घुट के सीने नाल लाया, अंदर लैके गए। इतिहासकार लिखते ने बाबा अमर

ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह। श्री भगवती जी सहाय वार श्री भगवती जी की पात साहि दसवीं प्रथम भगवती सिमर कै गुरु नानक लई त्याहे। फिर अंगद गुर ते अमरदास रामदासी हुए सहाय। अर्जन हर गोबिंद नाम सिमरव श्री हर राय श्री हर कृष्ण त्याई है। जिह दिठे सब दुख जाए तेग बहादुर सिमरिया कर नौने दया में ताए सब थाई होए सहाय। साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह दसवें पातशाह जी सब थाई होए सहाय। दसा पातशाहियां दी जोत धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पाठ दी दार दा ध्यान तरके बोलना जी। पंजा प्यारिया चौहान साहबजादिया चालिया मुक्तियां हठिया जपिया तपिया जिन नाम जपिया वंड के छकिया देग चलाई तेग वाही देह के अमडिठ कीता तिना प्यारिया सचारिया दी कमाई दा ध्यान तरके बोलना जी। जिन्ना सिंह सिंघनिया ने धर्म हे सीह दिते बंद बंद कटवाए खोपरिया लुहाइया चरखड़िया ते चढ़े तनारिया नाल चरवाए गुरद्वारिया दी सेवा लई कुर्बानिया कीतिया धर्म नहीं हारिया सिखी सिदक के सां सुवासा सांग निभाया तिना समूह शहीदा दी कमाई दा ध्यान तरके बोलना जी। पंजा तख्तां सरबत गुरद्वारिया जी का ध्यान तरके बोलना जी। प्रिथमै सरबत खालसा जी की अरदास है जी। सरबत खालसा जी को वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु चेतावै चेतावन का सदका सर्ब सुख होए जहां जहां खालसा जी साहिब तहां तहां रछिया रियाए तेग तेग फतेह बिरद की पैज पंथ की जीत श्री साहिब जी सहाय खालसा जी के बोल बाले बोलना जी। सिखां नूं सिखी दान केस दान रह दान वेक दान विसाह दान भरोसा दान दाना सिर दान नाम दान श्री अमृत सर साहिब जी दे दर्शन इशनान चौंकियां झंडे बुंगे जुगो जुग अटल धर्म का जयकार होवे बोलना जी। सिखां दा मान नीवा मत उची मत पादे राखे आव काल पुरख वाहिगुरु अपने पंथ दे सदा सहाय दितार जी ओ श्री ननकाणा साहिब समूह गुरधामां दे खुले दर्शन दीदार सेवा संभालता दा दान प्यारी खालसा जी नूं बख्शो निमाणियां दे मान नितानियां दे तान निओटियां दी ओड़ने आसरियां दे

से बोल बिगाड़ बिगड़ बोल तू नदरी अंदर तुल तुल जह करनी तह पूरी मत करनी बाजो कट काट प्रणत नानक ज्ञानी कैसा होए आप छाने बुझ सोए गुरप्रसाद कर विचार सुग्ञानी दरगे प्रवान चिर राग माला पहला घर चौथा तुंदरिया दाना बीना मैं मछली कैसे अंतल हाँ जह जह देखा तह तह तू है तुझे निकसी फूट मारा न जाना म्यो न जाना जाली जा दुख लागे तो तुझे संभाली रहाओ तू भरपूर जाने मैं दूर जो कश करी सो तेरे दूर तू देखे हाँ मुकर पाओ तेरे काम न तेरे नाए जित दे खाओ ब्यादर नाही कैधर जाओ नानक एक कहे अरदास जीवन सब तेरे पास अबे नेड़े दूरे आपे अबे मान्य मियानू अबे बेक सुने आपे ही कुतर करे जहानू जो दस पावे नानका हुकम सोई परवानू

आबे जे पी खाए कच्ची कंध कच्च बिच राज मत लूणी फिका साध ननक आने अमरास वृंदावन ना ही सब आस श्री राग महला पहला कार पंजवा अचल अचला इन चले न कह कुटारा कर सके जो साहब रखे त्यों रहे हैं इसलो भी का जियो टल पल बिन तेल है दीवा क्यों जल रहाओ पोति प्राण कमाइए पाओ बटिए तो तन पाइये सच बुझण आन जलाइए एहो तेल दीवा यो जल कर चरण साहेब तो मिले रहाओ इत तन लाग बाणिया सुख होवे सेवक माणिया सब दुनिया मन जानिया विच दुनिया सेव कमाइए तो दरग बैसन पाइए कहो नानक बाल उडाइए शराग मल तीजा घर पहला एक ओंकार सतगुर प्रसाद हो सतगुर से भी अपना एक मन एक चित पाए सतगुर मन कामना तीर्थ है जिस नु दे बुझाए मन चंदिया बार पावना जो छसो फल पाए नाउ दाइए नाउ मंगिए नम सहज समाए मन मेरे हर रस चाख तिक जाए जिन गुरमुख चाखिया सहज रहे समाए राओ जिन सतगुर से भिया तिन पाय नाम निदान अंतर हर सरब रहे चुका मन बमान हृदय कमल प्रगा से लगा सह ध्यान मन निर्मल हर रब रहे पाया दरगह मान सतगुर सेवन

रंगाए बिन भय के ही लाग। श्री राग महला तीजा कर ही सौदा पाइये अंतर सब वत होए खिन गिर नाम संभालिए गुरमुख पावे कोय नाम निधान खुट है प्रभाग प्राप्त होए। मेरे मन तज निंदा हो मैं अंकार हर जीव सदा त्याय तू गुरमुख एक अंकार रहो गुरमुख एक मुख उजले गुरु सबदी विचार हलत बलत सुख फायदे जब जब दे मुरार कर ही बेच मिल पाया गुरु सबदी विचार साध गुरते जो मोह फेरे मत तिन काले आंधन दुख कमाम दे नित जोहे जम जाले सुपना सुख ना देखनी बहुत चिंता पर जाले सपना का दाता एक है आप बख्श करे कहना कुछ ना जावे जिस भाव है तिस दे नान गुरमुख पाईया आपे जाने सोई। श्री राग महला तीजा सच्चा बेपरवाह सच्चा साहेब सेविए सच वडियाई देह गुरु प्रसादी मन बस हमें दूर करे इहो मन तावत तार है जय आपे नदर करे पाई रे गुरमुख हर नाम त्याए नाम निदान सद मन बस महले पावेता और हाओ मनमुख मन तन आंदे सुनो ठौर न ठाओ भोजन भौदा फिर जिस घर काओ गुरमति घट जन शब्द मिले हर नाओ त्रैगुण बिखया आंद माया मोह गुबार लभियान को शिव दे पड़ विदा करे पुकार बिखया अंदर पचमोए ना उर्वार न पार माया मोह विसारिया जगत पिता ब्रत पाल बज गुरु चेत सब बद्धि जम काल नान गुरमत बिरसा नाम संभाल श्री राग महला तीजा तगुर माया मोह है गुरमुख चौथा पद पाए गुर कृपा में लायन हर नाम उसया मन आए पुत जन कै पुन्य है तिन सतसंगत में लाए पाई रे गुरमुख साच रहाओ सजो साच कमावना सच

सहजे सच मिला बड़ा साज बड़ाई दे भाई रे गुर बिन भगत न होए बिन गुर भगत न पाईऐ जे लोचै सब को ए रहाओ लख चौरासी फेर पया कामण दूजा पाए बिन गुर नींद न आवे दुखी रहन बहाए बिन शब्द पिर न पाईऐ बिरथा जन्म गवाए हाँ हाँ करती जग फिरी ना तन संपै नाल अंधे नाम न चेते साबादी जमकाल सदगुर मिले तन पाया हर नाम हरदा संभाल नाम रते से निर्मले गुर कै सहज सुपाए मन तन राता रंग स्यों रसना रसन रसाए नानक रंग न उतरे जो हर तुर छोड़िया लाए श्री राग महला तीजा गौरमुख कृपा करे भगत की जा बिन गुर भगत न होई आपै आप मलाए बूजा ता निर्मल होवे सोई हर जियो साचा साची बाणी शब्द मलावा होई भाई रे भगत हीन काहे जग आया पूरे गुर की सेव न कीनी बिरथा जन्म गवाया रहाओ आपे जग जीवन सुख दाता आपे बख्श मलाहे जी जंत ए क्या बेचारे क्या को आख सुनाए गुरमुख आपे दे वड़ियाई आपे सेव कराई देख कुटंब मोहे लोभाना चलदिया नाल न जाई सतगुर सेव गुण निधान पाया तिसदी कीम न पाई हर प्रभ सखा मीत प्रभ मेरा अंते होए सखाई अपने मन चित कह कहाए बिन गुर आप न जाई हर जियो दाता भगत बछल है कर कृपा मन वसाई नानक सोभा सुरत दे प्रभ आपे गुरमुख दे वड्याई श्री राग महला तीजा धन जननी जिन जाया धन पिता प्रधान सतगुर सेव सुख पाया बिच हो गया गुमान दर सेवन संत जन खड़े पायन गुणी निदान मेरे मन गुरमुख त्याए हर सोए गुर का शब्द मन बसै मन तन निर्मल होए रहाउ कर कृपा कर आया आपे मिलिया आए गुर सबदी सा लाहिया रंगे सहज सुभाए सच्चा सच समाया मिल रहा न बिछड़ जाय जो किछ करना सो कर रहा अवर न करना जाए चिरे बछोने मेलिया न सतगुर पन्ना पाए आपे कार कराए सी अवर न करना जाए मन तन रता रंग स्यों हो मैं तज विकार एहन सहरदय रव रह निरपौ नाम निरंकार नानक आप मलायन पूरा शब्द अपार श्री राग महला तीजा गोविंद गुणी निदान है अंत न पाया जाए कथनी बदनी ना पाईया हो मैं बिचो जाए सतगुर मिले सद भैर चै आप बसै मन आए भाई रे गुरमुख बूझै कोए बिन बूझे कर्म कमावणे जन्म पदार्थ खोए रहाओ जिन चाखिया तिनी साध पाया बिन चाखे परम पलाए अमृत साचा नाम है कहना कछु न जाए पीवत ही प्रवान भया पूरा शब्द समाए आपे दे पाईया होर करना किछु न जाए देवन वाले कै हथ दात है गुरु द्वारा पाई जेहा की तोन तेहा होआ जेहे कर्म कुमाए जात सत संजम नाम है बिन नावै निर्मल ना होए पूरा भाग नाम मन बसा शब्द मिलावा होए नानक सहजे ही रंग वरतदा हर गुण पावै सोए श्री राग महला तीजा काया साधा उर्द तप करे बिचो होमै ना जाए अध्यात्म कर्म जे करे नाम न कभी पाए गुर का शब्द जीवित मरे हर नाम बसै मन आए सुन मन मेरे भज सतगुर सरना गुर प्रसादी छुटिया बिख भवजल शब्द गुर तरन रहाओ त्रै गुण सभा धात है दूजा भाव विकार पंडित पढ़े बंधन मोह बाधा न बूझे बिख्या प्यार सतगुर मिलिया त्रिकुटी छूटा चौथा पद मुक्त द्वार गुर ते मार्ग पाईया चूकै मोह गवार शब्द मरै ता उधर पाए मोख द्वार गुर प्रसादी मिल

करण विचार। ऐसा नाम निरंजन होए देखो मन जाने मन खोए, मन न सुरत होए मन बोध, मन न सकल पवन की स्वर्द, मन ने मुचटा न खाए, मन न जम के साथ न जाए। ऐसा नाम निरंजन होए देखो मन जाने मन कोय, मन ने मार्ग ठाक न पाए, मन ने पशु प्रकट जाए, मन ने मग न चले पंथ, मन ने धर्म से संबंध,

हरे गुरु सिख मन नानक पावै ना पेखो ऐसा नाम निरंजन होए देखो मन जाने मन कोय पंच परवान पंच प्रधान पंचे पावन दरगह मान पंचे सोहन राजान पंचा का गुरु एक ध्यान देखो कह है कर विचार करते कह करना नहीं सुमार तौल धर्म दया का पूर संतोष था प्रख्या जिन सूत

तिथ सोन पंच परवान नदरी करम पवे निशान कछब काए उथ पाए नानक जप जाए धर्म खंड काए हो धर्म ज्ञान खंड का आखो हो करम केते पौन पाणी वै सुंदर केते कान महेश।

कोई न किसकी तरिया सर सर जग समाए ठाकुर काहे मन पाऊ करिया उड़े उड़िया बस को सात पाछे बचरे चरिया तिन कवन खिलावे कवन चुगावे मन मह सिमरन करिया।

पढ़े बस सिमरत सास जी कर क्रिया खटकर्म करंता से भगत पल जन नानक जी जो भाव है मेरे हर भगवंता। तू आदि पुरख परम पर करता जी तू जेबड़े अवर न कोई तू दुख दुख एको सदा सदा तू एको जी तू ने चल करता सोई तुझे आपे पाव सोई वर्ता जी तू आपे कर सो होई तुझे आपे सिर सब।

गुर पौड़ी बेड़ी गुरु गुर तुलार नाओ गुर सरसागर भोजत गुर तिर दरियाओ जित पावे उजरी सत्सरनावन जाओ पूरो पूरो आखे पूरे तख्त निवास पूरे थान सुहावण पूरे आसगे निरास नानक पूरा दे में लै क्यों काटे गुणता श्री राग महला पहला आवो भैने गल मिले अंक सहेलड़िया मिलके करे कहानियां समरथ कंधे की।

तो अगणित सिरावे अखने गुणे सुनो सिगारे मिठा बोलनी पेर रसालो तामिल जहां गुर का सब सुने के तिया तेरिया कुदरती केवट त्रिदात केते तेरे जी जन सब कर रात केते तेरे रूप रंग केते जाते अजात सच मिले सच उपजे सच में सच समाय सुरत वे पत उगवे गुरबचनी भाव खाए नानक सच्चा पात साहु अपले मिलाय श्री आगमन लपल भली सरी जे उबरी होमे मुई कराओ दूत लगे फिर चाकरी सगुर का वे सा कलम त्यागी बाद सच्चा वे प्रवाह मन रे सच मिले पाओ जाए पैवन निरपो क्यों थी है गुरम सब समाय राव के तया खनिया की अखन तोट ना हो मंगन वाले के तड़े दाता को सोए जिसके दीपरण है मन वस्या सुख होए जग सुपना बाजी बने खिन में खेल खिलाए संजोगी मिले एक से वे जोगी उठ जाए जो तुपाना सोती अवना करना जाए गुरम के वस्तु साइए सच वकर सच रास जिन्हें सच बणन दिया गुरपुरे सवास नानक वस्तु पछाण से सच सौदा जिस पास श्री राग महला पहला तात मिले प्रताप को सिफ्ट शिव समाये लाल गुलाल गैबरा सच्चा रंग चढ़ाओ सच मिले संतोखिया हर जपे कह पाए पाई रे संत जना की रेण संत दबा गुरु पाइये मुक्त बदार तेण राउ चौथान सुहावना उपर मैल मुरारे सच करनी दे पाइये दर कर मैल प्यार गुरमुख मन समझाइए आत्म राम विचार त्रिवृत कर्म कमाई आसन देसा होए क्यों गौरबिन त्रिकुटी छुटसी सहज मिलिया सुख होए निजकर मैल पछाणिए नजर करे मल धोए बिन गुरु मैल न उतरे बिन हर क्यों कर वास कुसद वे विचारिये और त्यागे आस नानी देख दुखाइए सत बलिहारे दास श्री राग महला पहला त्रिक जीवन दुहागनी मुठी दूजे पाए कलर के रिकंद जो है निस्कर टह पाए बिन सब दे सुख नाथिए प्रबिन दुख न जाए मुंदे पिर बिन क्या सिगार दर कर टोई ना लहे दरगा चूड़ कुवार राहु आपस जान न भुले सच्चा वड़ कर साण पहला धरती साध के सच नाम दे दान नौ निध उपजे नामे करम पवे निशान गुर को जान न जानी क्या ते चाजाचार अंदले नाम सारिया मन के अंध गुबार आमन जान न चुके मार जन्म में हो खुआर चंद्र मोल अनाया कुंकुमा सुंद

त्यों नर जास जियरे राम जब तमन मानु अंतर लागे जाल बुद्धि पाया गुरु ज्ञान राव अंतर की गत जानिए गुरु मिलिया संक्योतार मोया जित कर जाइए।

खाड़ दरगाह पहनाए मुखर नाम ने वासो जद खाता रावरे सब शक्ति का मेल त्रिगुण बंदी देरी जो आया जग स्यो खेल वे जोगी दुख विछड़े मलमुख लहे न मेल मन बैरागी कर वसे सच पाए राता होए ज्ञान मारस भोगवे बौड़ भूख न होए नानके मन मार मिल पी फिर दुख न होए श्री राग महला पहला मन मूर्ख लोभिया लोभे लगा लुबान शब्द न पी जय सा

कर्तन जान साब सुख हरस भोगने संत सभा मिल ज्ञान नेतयान सर प्रभ से व्या सदगुरु दिया नाम कुकुर कुड़ कमाये गुण निंदा पज पान परमे भुला दुखनो जम मार करे खुलहान मानमक सुख न पाइये गुरमुख सुख सुभान अथे तंद पढ़ाइये सतलित प्रवान सज्जन गुरु सेवदा गुरकरणी प्रधान नानक नाम नाम विसरे करम सचै निशान।

ना विसरेते जन्मर ले संसार राव ज्योति ज्योत मिलाइए श्रुति श्रुति संजोग हिंसाओं में घात गए ना ही सहसा रोग गुरु जैसा मन से

अमृत प्रयाग आय नान सगुरु वेद कर सतपा में दरगाह जाए श्री राग माला पहला हर हर जप प्यारे गुरु तुले हर बोल मन सज कस वटी लाइये पो तुलिये पूरे तोले कीमत गिरना पाइये रिद मानक मोल अमाल पाई रे हरे रा गुरु माए सत्संग सगुरु पाइये अनस

रतना है पूरे सतगुरु पास सतगुरु सेवे लग्या कड रतन देवे प्रकाश धन वट भागी वट भागिया सो आए मिले गुर पास जिन्ना सतगुर पुरख न भेट्यो से पागही बस काल ओए फिर जोन पवागे बिच बिस्तर कर विकराल उना पास दुआ न पिटिया जिन्ना अंतर क्रोध चंडाल सतगुर पुरख अमृत सर बट भागी नावे आए उन जन्म जन्म काए उन जन्म जन्म की मैल उतरे निर्मल नाम दड़ाए जन नानक उत्तम पद पाया सतगुरु की लिवलाए श्री राग महला चौथा

रंग हर साब जग मह चन होए श्री राग महला पंजमा मन बिलास बहु रंग कना दिट पूल खुशियां छतर तहर बसाइया विच ससे परियां भाई रे सुख साध संग पाया लिखिया लेख तिन पुरख बिदाते दुख ससा मिट गया रहाओ जेते थां थन त्रा तेते पहा आया तन पाती वड भूमिया मेरी मेरी कर परिया हुकम चलायन संग होए वरते फरिया साब को बसगत कर लायन बिना वे खाक रलिया कोट तेती सब सेवका सिद साधक दर खरिया गुरबारी वड साहिबी साब नानक सुगंथिया श्री राग महला पंजमा पलके उठ पुल गए बिन बूझे मुग्ध अजान सो प्रभ चेतन आयो छुटे घी बेबान सतगुर सेती चत लाए सदा सदा रंगमान प्राणी तू आया लाह लैन लगा कित कुफड़े सब मुखदे चली रहन रहाओ उदमा करे पास पंखियां दिसे नाही काल उते साथ मु

मुक्त सही पाले जे सच्चा नाम समाल जो कर छड गुवावना जो छड गुवावना सो लगा मन माहे जिथे जाए तुद बतना तिस की चिंता नाए पाते सही निकले जे गुर की पैरी पाए कोई रख ना सके दूजा को न देखाए चारे कुंडा पाके आया पया सन्नाए नानक सच्चे पासा डुबदा लाया कड़ाए श्री राग महला पंजमा कढ़ी मोहत का पहुना का सवार नहार माया काम न व्याप्या समझे नहीं गुवार उठ चलिया पछताया भरिया बस जंजा भरिया बस जंदार मुंदे तू बैठा कंधी पाए जे हो भी पूर्व लिखिया ता गुर का बचन कमाए राओ हरी नहीं नए डडरी पक्की बडनहार लल दहत पहुंचा लावे कर तैयार जा हुआ हुक्म के सांदा तान हुन मिया खतार पहला पैर तंदे गया दूजे बहा सोए तीजे चख चखाया तीजे चाख चखाया चौथे पहर पाया कद ही चेतना योजन जियो पिंड दिया साध संगत को वारिया जियो किया कुरबान जिससे सोजी मन पही मिलिया पुरख सुजान नानक डिठा सदा नाल हर अंत जामे जान श्री राग महला पंजमा सबे गल्ला विसनी को विसना जाओ धंधा सब जो लाए के गुर गुर दी गुर नाम दिया सच सुवाओ आसा सबे लाए के इक आस को माओ जिन्नी सतगुर सेवा तिन आगे तिन अगे मिलिया थाओ मन मेरे करते नौ सो लाहे सबे छड सियाण पा गुर की पैरी पाए रहाओ दुख भुख नहि व्यापी जे सतगुरु जे सुखदाता मन होए कितने ही कामना छिजिया जाए हृदय सच्चा सोए जे तू रखे तिस ते तिस मार न सके कोए सुखदाता गुरु सेविया सब अवगण कड्डे धोए सेवा मंगे सेवको लाइन अपनी सेव साधु संग मस्कते तुठा पावा देव साब किस वासगत साहिबे आपे करन करेब सतगुर के बलिहार ने मसा सब पूरे न इको जिसे सजना इको पाई मीत इक्ष दी समगरी इक्ष दी हरीत इक्ष स्यो मन मान्यता हुआ निच चीत सच खाना सच पहनना टेक नानक सच कीत श्री राग महला पंजमा सबे थोक प्राप्त जे आवे एक हाथ जन्म पदार्थ सफल जे सच्चा शब्द कथ गुर के महल प्राप्त जस लिखिया होवे मथ मेरे मन इस स्यो चतला इस बिन सब तंद सा मिथा मोह माए रहाओ ला खुशियां पा संगा जे सतगुर नदर करे निमख एक हर नाम दे मेरा मन तो शीतल होए जिसको पूर्व लिखिया ते सतगुर चरण गए सफल मूत सफला कढ़ी जत साचे नाल प्यार दुख संताप न लगी जस हार नहा नाम आधार वहां पकड़ गुर काढ़िया सोई उतरिया पार तन स्वभाव पवित्र जिथे संत सभा ढोई तस्म धूम ले जन गुरपुर जन पूरा गुरु लब्बा नानक बदा कर तहां जिथे मित ना जन्म जरा श्री राग महला पंजमा सोई त्याग जीड़े सिर साह पसाओ जिस ही की कर आसमान जसका सब सबसाओ सब स्यापा छड के गुर गुर के चरनी पाओ मन मेरे गुर सुख मन मेरे सुख सहज सति जप नाओ आठ पैर प्राप्त आए तू गुण गोविंद नित गाओ राओ तकी सरनी पार मना जस जेबड़िया बना कोई जस सिमत सुख होए कना दुख दर्द ना मूले होए सदा सदा कर चाकरी प्रभ साहेब सच्चा सोए
साध संगत हो निर्मला कटके जमकी पास सुख दाता पे पंजनों ते सागे कर उदास मेह करे जिस मेहरबान ताकाज आबिरास बहुत बहुत बखानिये उच्चा उच्चो उच्चा था विरन चहना बहरा कीमत कह न सुखाओ नानक कहो प्रभ माया कर सच देव अपना नाव श्री राग महला पंजमा नाम त्याय सो सुखी तिस सुमते सो मुख उजल होए पूरे गुरते पाये प्रगट सबनी लोए सात संत के कर बरसे एक सच्चा सोए मेरे मन हर नाम ते आए नाम सुहाई सदा संग अगे लै मैं छुड़ाए रहाओ दुनिया की बड़े आईया कहने आवे काम माया का रंग साफिका जातो बिस निदान जाके हृदय हर वसे सो पूरा प्रधान साधु के हो रहन का अपना आप त्याग आप ओ स्याणप उपाव उपाव स्याणप सगल छड गुर के चरनी लाग तिसे प्राप्त रत्न होए जस मस्तक होवे पाग तिसे प्राप्त पाहियो जस देवे प्रभ आप सतगुरु की सेवा सो करे जिस बिन से होमे ताप नानक नानक कहो गुर भेटा बिन से सगल संताप से राग महला पंजमा एक पछाणु एक पछाणु एक पछाणु एक पछाणु जा जा किया इको रखनहार एक सकामने आसा इको प्राण धार तिसर नाई सदा सुख पार ब्रह्म करतार मन मेरे सगलो पह त्याग गुर पूरा आराधन नित इसकी लिवलाग रहाओ इको भाई मित इको इको मत पिता इसकी मन एक टेक है ज्यो जियो पिंड दिता सो प्रभ मन न बिसरे सब जिन सब किश बस कीता घर इको बाहर इको थान संतर आप जी जंत सब जिन की है आठ पर तिस जाप इक्स छेती रत्या सो होवे सुख संताप पार ब्रह्म प्रभ एक है दूजा नाही कोय जियो पिंड सब तिसका जो तिस पावे सो होए गुरपुरे पूरा पाया जप नानक सच्चा सोए श्री राग महला पंजमा जिन्ना सतगुर से उचित लाए उसे पूरे प्रधान जिनको आप दयाल होए तिन उपजे उपजे मन अगे आन जिन को मस्तक लिखिया तिन पाया हर नाम मन मेरे को नाम त्याए सर्व सुख सुख उपजे दरगे पहंदा जाए रहाओ जन्म मरन पा जन्म मरन का पहो गया पहो भगत गोपाल साधु संगत निर्मला आप करे कृपाल जन्म मरन की मन कटिए गुरदर्शन देख निहाल थां संत रव रहा पार ब्रह्म प्रभ मसोए सबना दाता एक है दूजा नाही कोय तिस नाई छुटिए कीता लोड़े सो होए जन मन बस्या पार ब्रह्म से पूरे प्रधान तिनकी शोभा निर्मले प्रगट पई जहान जिनी मेरा प्रभ त्याया नानक तन कुरबान से राग महला पंजमा मिल सतगुरु सब दुख गया हर सुख बस्या मन आए अंतर जोत प्रगा सिया स्यों लिबलाए मिल साधु मुख उजला पूर्व लिखिया पाए गुण गोबिंद नित गाम ने निर्मल साचे नाए मेरे मन गुर शब्द सुख होए गुर पूरे की चाकरी बिरथा जाए ना कोए रहाओ मन किया इच्छा पूरिया पाया नाम निदान अंतर जामी सदा संग करने हर पछाण गुर प्रसादी मुख उजला जप नाम दान इनान काम क्रोध लोभ बिनस्या तजा सब अभिमान पाया लाह लाभ नाम पूर्ण होए काम कर कृपा प्रमेलिया दिया अपना नाम आवन जाना रह गया आप हुआ मेहरबान सच महल कर पाया गुर का शब्द पछान भगत जना को रखदा अपनी कृपा धार हलत पलत मुख उजले सचे के गुणसार आठ पैर गुण गा सार दे आठ पैर गुण सार दे रते रंग अपार
ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਸੁਖ ਸਾਗਰੋ ਨਾਨਕ ਸਤ ਬਲਿਹਾਰ ਸ੍ਰੀ ਰਾਗ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਪੂਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੇ ਮਿਲੇ ਪਾਈਏ ਸ਼ਬਦ ਨਿਧਾਨ ਕਿਰਪਾ ਪ੍ਰਭੇ ਆਪਣੇ ਜਪੀਏ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੁੱਖ ਕੱਟੀਏ ਲਾਗੇ ਸਹਿ ਧਿਆਨ ਮੇਰੇ ਮਨ ਪ੍ਰਭ ਸਰਨਾਈ ਪਾਏ ਹਰ ਬਿਨ ਦੂਜਾ ਕੋ ਨਹੀਂ ਇੱਕੋ ਨਾਮ ਤੇ ਆਏ ਰਹੋ ਕੀਮਤ ਕਹਿ ਨ ਜਾਈਏ ਸਾਗਰ ਗੁਣੀ ਅਥਾਹ ਵਡਭਾਗੀ ਗੁਰ ਸੰਗਤੀ ਸੱਚਾ ਸ਼ਬਦ ਵਿਸਾ ਕਰ ਸੇਵਾ ਸੁਖ ਸਾਗਰੇ ਸਿਰਸਾ ਪਸਾਓ ਚਰਨ ਕਮਲ ਕਾ ਆਸਰਾ ਦੂਜਾ ਨਾਹੀਂ ਠਾਓ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੇਰੀ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਤੇਰੇ ਤਾਣ ਰੁਹਾਓ ਨਹੀਂ ਮਾਣਿਆ ਪ੍ਰਭ ਮਾਨ ਤੂੰ ਤੇਰੇ ਸੰਗ ਸਮਾਓ ਨਮਾਣਿਆ ਪ੍ਰਭ ਮਾਨ ਤੂੰ ਤੇਰੇ ਸੰਗ ਸਮਾਓ ਹਾਰ

चित आवै उस पार ब्रह्म तन निहचिल होवै राज। जाको चिंता बहुत बहुत देही व्यापै रोग। गृहस्थ कुटंब पलेटिया कदे हरक कदे सोग। गौण करे चौकुंट का कड़ी न बैसन सोय। चित आवै उस पार ब्रह्म तन मन शीतल होय। काम क्रोध मोह बस किया किरपन लोभ प्यार। चारे किलविख उन अग किए हुआ असुर संघार। पोथी गीत कवित किश कदे न करन तरिया। चित आवै उस पार ब्रह्म ता निमख सिमरत तरिया। शास्त्र सिमरत बीद चार मुखागर विचरै। तपै तपीसर जोगिया तीर्थ गवन करे। खट कर्मा ते दुगणे पूजा करता नाई। रंग न लगी पार ब्रह्म ता सरपर नरके जाय। राज मिलक सिकदारियां रस भोगण विस्थार। बाग सुहाणे बाग सुहावे सोने चले हुक्म अफार। रंग तमाशे बहुविधि चाए लग रहा। चेतन ना आयो पार ब्रह्म ता सर्प की जोन गया।

साहेब अंग गुर प्रसाद हर हर नाम है हर मन पाया वड़भागी हर नाम ते आया गुर पूरे हर नाम सिद्ध पाई को विरला गुरमत चले जीव मैं हर हर खर्च लिया बन पल मेरा प्राण सकाई सदा नाल चले गुर पूरे हर नाम दड़ाया हर निचल हर तन पल्ले जीव हर हर सज्जन मेरा प्रीत मराया होई आन मिलावै मेरे प्राण जीवाया हो रह न सका बिन देखे प्रीतमा मैं नीर वहे वह चले जीव सतगुरु मित्र मेरा बाल सखाई हों रह न सका बिन देखे मेरी माई हर जियो कृपा करो गुरु मेल हो जन नानक हर तन पल्ले जीव माज महला चौथा मद सुदन मेरे मन तन प्राणा हो हर बिन दूजा अवर न जाना कोई सज्जन संत मिले बड़भागी मैं हर प्रभ प्यारा दसे जीव हो मन तन खोजी पाल पाल आई क्यों प्यारा प्रीतम मिले मेरी माई मिल सत संगत खोज दसाई विच संगत हर प्रभ वसै जीव मेरा प्यारा प्रीतम सतगुर रखवाला हम बारक दीन करहो प्रतिपाला मेरा मात पिता गुरु सतगुर पूरा गुर जल मिल कमल विकसै जीव मैं बिन हर गुर देखै नींद न आवै मेरे मन तन वेदन गुर बिरहों लगावै हर हर दया करो गुर मिलो हो जन नानक गुर मिल रहसे जीव माज महला चौथा हर गुण पढ़िए हर गुण गुणियै हर हर नाम कथा नित सुनियै मिल सतसंगत हर गुण गाए जग पौजल दुत्तर तरिए जियो आओ सखी अर मेल करेहा मेरे प्रीतम का मैं दे स्नेहा मेरा मित्र सखा जो प्रीतम पाई मैं दसे हर नर हरियै जियो मेरी बेदन हर गुर पूरा जानै हो रह न सका बिन नाम बखाणै मैं औखद मंत्र दीजे गुरपुरे मैं हर हर नाम उधरियै जियो हम चात्रिक दीन सतगुर सरनाई हर हर नाम बूंद मुख पाई हर जल निध हम जल के मीने जन नानक जल बिन मरिए जियो माज महला चौथा हर जल निध हम जल के मीने माज महला चौथा हर जन संत मिलो मेरे भाई मेरे हर प्रभ दसहो मैं भुख लगाई मेरी सरदा पूर जग जीवन दाता मिल हर दर्शन मन पीजे जियो मिल सतसंगत बोली हर बाणी हर हर कथा मेरे मन पाणी हर हर अमृत हर मन भावै मिल सतगुर अमृत पीजे जियो वड़भागी हर संगत पावै भागहीन भ्रम चोटा खावै बिन भागा सतसंग न लब्भै बिन संगत मैल परिजे जियो मैं आए मिलो जग जीवन प्यारे हर हर नाम दया मन धारे गुरमत नाम मीठा मन पाया जन नानक नाम मन पीजे जियो माज महला चौथा हर गुर ज्ञान हर रस हर पाया मन हर रंग राता हर रस पी आया हर हर नाम मुख हर हर बोली मन हर रस टुल टुल पौदा जियो आवो संत मैं गल मेल आइए मेरे प्रीतम की मैं कथा सुनाइए

सिमृत सात जिन उपाया काम क्रोध पसरिया संसारे आए जय दुख पावने आ तिस विच ज्ञान रतनिक पाया गुर प्रसादी मन वसाया जात सा संयम सच कमावे गुर पूरे नाम त्यावने आ पीड़े तन परम पलाणी दूजे लागी फिर पछताणी हलत पलत दोवे गवाए सुपने सुख न पावने आ पीड़े तन खंत संभाले गुर प्रसादी वेखे नाले फिर के सहज रहे रंग राती सब सिंगार बनावने आ सबल जन्म जना सतगुर पाया दूजा पाओ गुर शब्द जलाया एको रब रया कट अंतर मिल सत संगत हर गुण गावने आ सत गुरु ना सेवै सो काहे आया त्रिग जीवन बिरथा जन्म गवाया मनमुख नाम चेतन आवे बिन नामे बहु दुख पावने आ जिन सेठ साजी सोई जाने आपे मिले शब्द पछाने नानक ना मिले आ तिन जन को जिन तुर मस्तक लेख लखावने आ माज महला तीजा आदि पुरख अपरंपरे आपे आपे थाप्यो थाप्यो थापे सामे वरते एको सोई गुरमुख सोभा पावने आ हां वारी जियो वारी निरंकारी नाम त्यावने आ तिस रूप नारेख्या कड़ कड़ देखे आ गुरमुख लख लखावने आ रा तू दयाल कृपाल प्रभ सोई तुद बन दू जावरना कोई गुर प्रसाद करे नाम देवै नामे नाम सुमावने आ तू आपे सच्चा सुरजनहारा भगती परे तेरे भंडारा गुरमुख ना मिले मन पीजै सहज सहमादल सहज समाद लगावने आ अणदिन गुण गावा प्रभ तेरे तुद सलाही प्रीत मेरे तुद बनिया वरना कोई जाचा गुर प्रसादी तू पावने आ अगम गोचर मित नहीं पाई अपनी कृपा करे तू लय मलाई पूरे गुर के शब्द ते आईये शब्द सेव सुख पावने आ रसना गुणवंती गुण गावे नाम सुलाए साचे पावे गुरमुख सदा रहे दिन राती मिल सच्चे सोभा पावने आ

रस सन देही सब खाम प्रभ स्वामी कंत विहोणी अमीर सजन सब जाम नानकी बेनंतिया कर कृपा दीजै नाम अर मिलो स्वामी संग प्रभ जिसका नेचल धाम चेत गोविंद औराधी है हो वे आनंद का नाम संत जना मिल पाई रसना नाम पना जिन पाया प्रभ अपनाए तिसे गणायकन तिस बिन जीवना बिरथा जन्म जना जल थल मैयल पूरे रविया विच बना सो प्रभ चेतन आवई कितड़ा दुख गणा जिनी रावया सो प्रभु तिना भाग मना हर दर्शन को मन लोचदा नानक प्यास मलां चेत मलाए सो प्रभु तिसके पाए लगा वै साग तिरन क्यों वाढ़िया जिन्ना प्रेम बिछो हर साजन पुरख विसार के लगी माया तो पुत्र कुलत्र ना संगत नार्य विनासी ओ पलच पलच सगली मुई झूठे तंदे मुख सर के नाबे नगे लिये खोए यो सर्व गुचना प्रभ निवरणा कोय प्रीतम चरणी जो लगे तन की निर्मल सोए नानकी प्रभ बेनती प्रभ मिलो प्राप्त होए वै साग सुहावा तां लगे जां संत भेठे हर सोए

जो तुम कहो सोई मोहे करना, जह पेखो तहां तुम बसना, नृपो नाम जपो तेरा रसना। तू मेरी नाव निध तू पंडार, रंग रसा तू मने आधार, तू मेरी शोभा तुम संग रचिया, तू मेरी ओट तू है मेरा तकिया।

सुने नगर परे ठगहारे उन ते राखे बाप ना माई उन ते राखे मीत ना पाई दरब सियान पनाई हुए रहती साध सांग हुए दुइट वास होते कर कृपा।

ब्राह्मण जाना, साधकै संग पार ब्रह्म पिछाणा। जन उपर प्रभ पै दयाल, जन की टेक एक गोपाल, एक काल एको मन भाओ, सरबण दान।

अमृत गुण उचरे प्रभ बाणी पूरे गुर की सुमत पुरानी प्रभ स प्रभ सिमरत कुशल सब पाए कारोबार सुख सहज सुपाए ना सोई।

जांका कह या धर गय चल सो किस को नदर लयावे तल जांका सब किच ताका होए नानक ताको सदा सुख होए गौड़ी महला पंजमा जांका दुख सुख।

कवन सो पूजा तेरी करो, कवन सो बेदा जित भव जल तरो, कवन तप जित तपिया होए, कवन सो नाम होमे मल खोए। गुण पूजा गुण गुण पूजा ज्ञान ध्यान, नानक सगल काल जिस कर कृपा सतगुर मिले।

कर आए भेड़त साध संग गई बुलाए रहाओ नेत्र पुनीत पेकत ही दरस तन मस्तक चरण कमल ही परस गोविंद की टहल सफल एह काया संत प्रसाद परम पद पाया जन की कीनी आप सहाय सुख पाया लगदा सह पाए आप गया ता आपे पए कृपा निदान की शरणी पए जो चाहत सोई जब पाया तब टूंडन कहाँ को जाया आस्त्र पए वसे सुख आसन गुर प्रसाद नानक सुख वासन गौड़ी महला पंजवा कोट मजन कीनो इश्नान लाख अरब खरब दीनो दान जा मन वस्यो हर को नाम सगल पवित गुन गाय गोपाल पाप मिटहे साधु शरण दयाल रहाओ बहुत उर्द तप साधन सादे हनिक लाभ मनोरथ लादे हर हर नाम रसन अरादे सिमरत शास्त्र वेद बखाने जोग ज्ञान सिद्ध सुख जाने नाम जपत प्रभ स्यों मन माने अगाध बोध हर अगम अपारे नाम जपत नाम हृदय विचारे नानक को प्रभ कृपा तारे गौड़ी महला पंजवा सिमर सिमर सिमर सुख पाया चरण कमल गुर हृदय बसाया गुर गोविंद पर ब्रह्म पूरा तसे अराध मेरा मन तीरा रहाओ आंदन जप्यो गुरु गुर नाम ताते सिद्ध पए सगल काम दर्शन देख शीतल मन पए जन्म जन्म के किल विख गए कहो नानक कहा है कहो नानक कहा पै पाई अपने सेव किया पै जर खाई गौड़ी महला पंजवा अपने सेव को आप सुहाई नित प्रत पारै है बाप जैसे माई प्रव की शरण उभरे सब कोई करन करावन पूर्ण सच सोई रहाओ अब मन वसिया करने हारा पै बिन से आतम सुख सारा कर कृपा अपने जन राखे जन्म जन्म के किल विख लाते कहन न जाए प्रव की वडे आई नानक दास सदा सरनाई रा गौड़ी चेती महला पंजवा दो पदे एक ओंकार सतगुर प्रसाद राम को बल पूर्ण पाई ताते विरतना व्यापै पकाई रहाओ जो जो चित वै दास हर माई।

उज्जवल वीर ब्रह्म सुख सागर गर्त परत गहले हो अंगुरिया रहाओ सर्वना सुरत नैन सुंदर नहीं आरत द्वार रटत पिंगुरिया दीनानाथ अनाथ करुणा मैं साजन मीत पिता महतरिया चरण कवल हृदय गह नानक पैसागर संत पार उतरिया राग गौड़ी वैरागन महला पंजवाउ एक ओंकार सतगुर प्रसाद जग साई मि तुला तू संग हमारे वास जियो रहाओ तुझ बिन करीना जीवना त्रिग रहना संसार जी प्राण सुखदातया निमख निमख बलिहार जी हस्त अलंबन देहो प्रभ गर्त हो ओ तर गोपाल मोहे निर्गुण मत थोरिया तू सद ही दीन दयाल क्या सुख तेरे समलाह कवन विधि विचार शरण समाई दास हित उचे अगम अपार सगल पदार्थ अष्ट सिद्ध नाम महारस माहे सो प्रसन्न पय केसवा से जन हर गुण गाहे मात पिता सुत बंध पो तू मेरे प्राण आधार साध संग नानक भजै बिक